अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चांदला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः श्रृंगार आरती की, जय जय श्री सीताराम।

0: जय।
1: श्री पवन सुत हनुमान की
0: जय।
1: श्री उमापति महादेव की
0: जय।
1: श्री रमापति रामचंद्र की
0: जय।
1: श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की
0: जय।
1: बोलो भाई सब संतन की
0: जय।
1: जय जय
0: श्री सीताराम।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग।

0: सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सहस्त्रों यत्नशील मनुजों में कोई एक ही सिद्धि प्राप्त कर पाता है, वह उनमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। श्री भगवान अपनी समस्त जड़ एवं चेतन शक्तियों का विवेचन करते हैं, वह स्वयं को प्रकृति के गुणों से परे त्रिगुण परम कहते हैं। मधुसूदन कहते हैं,

हे भरतऋषभ, दुष्ट नराधम मूढ़ असुर व माया के वश में अज्ञानी कभी भी मेरी शरण में नहीं आते। इसके विपरीत मुझे आर्त जिज्ञासु अर्थ अर्थी व ज्ञानी पुरुष भजते हैं। इन सब में मुझको ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय है।

श्री भगवान कहते हैं कि विभिन्न देवताओं में उपासकों की श्रद्धा को मैं ही स्थिर करता हूँ। देव पूजक देवों को जाते हैं और मेरे भक्त मुझको पाते हैं। मुझ अजन्मे अविनाशी को व्यक्ति भाव में जानने वाले मूढ़ व अज्ञानी हैं। श्री गोविंद के शब्दों में

हमारे यहां नदियां हमेशा से पवित्र रूप में देखी जाती रही हैं। वेदों की ऋचाएं तो यहां तक कहती हैं कि जो व्यक्ति गिरी आश्रय या नदी संगम पर ध्यान मनन करता है उसे ही पवित्र बुद्धि प्राप्त होती है। इसी गहरे विश्वास के चलते आर्यों की प्राचीन सभ्यता सात नदियों के आसपास विकसित हुई और उस प्रदेश को सप्तसैंधव प्रदेश कहा गया। धीरे धीरे ये आर्यजन अपनी सभ्यता का विस्तार करते हुए महाकौशल और मालवा के पठारों की गहरी घाटियों में भी उतरते चले गए, जहां उन्होंने पहली बार

मत्स्य पुराण के अनुसार गंगा कनखल तक, सरस्वती कुरुक्षेत्र तक, किंतु नर्मदा तो अमरकंटक के सघन जंगलों से होकर खंभात की खाड़ी तक एक सी पवित्र है। इतनी पवित्र कि वह अपने दर्शन मात्र से धन्य

0: इसकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा भी अत्यंत अर्थगर्भी और प्रासंगिक है। इन्हीं जनश्रुतियों के आधार को मजबूत करते हुए डिंडौरी गांव के श्री अरविंद नारायण पाराशर।
1: जनश्रुतियों के आधार पर अमरकंटक जो नाम अभी हम लोग सुना करते हैं, ये अपभ्रंश होना चाहिए, क्योंकि अमरकंटक का मूल नाम अमरकंठ है और यह शंकर जी के उस नीलकंठ को स्मरण कराता है जिसके जरिए जहर पी करके भी वे अमर हैं। इसीलिए यह भी जाहिर होता है कि अमरकंटक, तथाकथित अमरकंटक, शंकर जी की तपस्थली है। और एक बार जब वे अपने तप में इतने अधिक लीन हो गए कि प्रेमाश्रु बहने लगे, तो एक एक अलग अलग प्रेमाश्रु एक एक जलधारा के रूप में बह निकला, एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बही जलधारा नर्मदा और पूर्व की ओर बही हुई जलधारा सोन के नाम से प्रसिद्ध।
0: जबलपुर के समीप धुआंधार और भेड़ाघाट के जलप्रपात के दृश्य नर्मदा के यौवन के हित प्रमाण।

0: विश्व प्रसिद्ध धुआंधार यदि नर्मदा का विस्फोटक उल्लास है तो भेड़ाघाट उसके आत्मसंयम की निशानी। नर्मदा को जीवनदायिनी प्रतिपादित करते हुए जबलपुर के अमृतलाल जी बेगर।
1: बरमान घाट का मेला

नर्मदा का भंडार सदा भरा रहेगा। नर्मदा सच्ची अर्थों में माता बनेगी। नर्मदा कभी हमारे देश को दो हिस्सों में बांटती थी, आर्यावर्त और द्रविड़ देश के बीच की विभाजन रेखा थी। बाद में यही नर्मदा उत्तरापथ और दक्षिणापथ की संस्कृतियों की मिलन रेखा बनी और अब यही होगी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा। नर्मदा तो बस नर्मदा है, जैसा भव्य उसका अतीत है वैसा ही उज्ज्वल उसका भविष्य है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।

नर्मदा की पूर्वी और पश्चिमी घाटी में गौंड, बैगा, कोरकू और भील जैसी अनेक जनजातियां आज भी नर्मदा के सघन विरल वनों और उबड़ खाबड़ घाटियों को अपनी बांसुरी और मांडल से गुंजाती रहती हैं।

नर्मदा के पश्चिम घाट के आदिवासी मुख्यतः भील और भीलाला है, जो झाबुआ, अलीराजपुर और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में सूखी जटाओं की तरह नीरस और नंगी पहाड़ियों के बीच कंकरीली पथरीली जमीन में शताब्दियों से जीवन यापन कर रहे हैं।

पूर्वी छोर पर बसे बैगांव का जीवन अपने आप में मोहक है। प्रशस्त ललाट, बढ़े हुए केश, चीथी पर लटकता हुआ जुआ, कमर से लिपटा हुआ कोपिन, कंधों पर रखा हुआ धनुष और कुल्हाड़ी, बांस के टपरों पर मिट्टी के पलस्तर वाले घर और जंगलों की निर्द्वंद चुप्पी में जब ये अपनी टिंकी और मांदल उठाकर हरेली, दशहरा, नवाखाना या विदुरी का उत्सव मनाते हैं तो उल्लास से थिरक उठते हैं।

0: बैगा जाति का विस्तृत वर्णन करते हुए डॉक्टर नित्य उपाधीक्षित।
1: मंडला जिले की समस्त जातियों के बीच सबसे प्राचीनतम जाति बैगा है और इस जाति का निवास स्थान मेकल शैलमाला है जो कि नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है। मेकल शैल मालाओं में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घने जंगलों में रहने के कारण ये वहाँ की वनस्पतियों से जड़ी बूटियों से सुपरिचित हो जाते हैं और असाध्य रोगों में उनका प्रयोग करते हैं। जब कभी ये नीचे आते हैं तो लोग ऐसा कहा करते थे कि बैदगा आ गया। मंडला के पूरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है, वहां पर गा लगाने की परंपरा है, तो जब भी बैगा नीचे जाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि बैदगा आ गया, अर्थात दवा देने वाला आ गया। बाद में कालांतर में प्रयत्न लाघव के नियम के अनुसार मानव की प्रति संक्षिप्त में बोलने की है तो दा वर्ण का लोप हो गया और बैदगा से बैगा बन गया। वास्तव में ये जाति औषधि उपचार और झाड़ा फूंक करने वाली एक कौम है जो झाड़ा फूंक करती है और औषधि के द्वारा उपचार करती है। इस तरह की कृत्य करने वाले को बैगा कहा जाता था।

0: नर्मदा कहीं भी अकेली नहीं है। हिरन, बारना, कोलारमान, हथनी और सांग यदि उसके दाएं हैं, तो बर्नर, बंजर, दूधी, तवा, कंजाल और करजन जैसी 20 सहायक नदियां उसके बाएं हैं। भारत की अन्य नदियों की तरह ये पश्चिम से पूरब की ओर न बहकर पूरब से पश्चिम की ओर अरब सागर की दिशा में बहती है। 1312 किलोमीटर की यात्रा तय करती हुई जब ये भड़ौच या भृगुकच्छ क्षेत्र से होकर खंबात की खाड़ी में मिलने लगती है, तब ऐसा जान पड़ता है कि यह अमरकंटक वाली शर्मिली नर्मदा नहीं है जो अपने उद्गम पर गुलबकावली के फूलों की सहज मुस्कुराहट बिखेरती है। यहां न तो नर्मदा का मेघ शेष बसता है, न उसका चिरपरिचित उद्वेलनकारी प्रवाह। निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राम नारायण उपाध्याय नर्मदा के नाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं,
1: यह हमारा जो निमाड़ अंचल है, यह विंध्य और सतपुड़ा से रक्षित है और नर्मदा इसके बीच जीवन रेखा की तरह बहती है। गंगा जो है वो मैदानी इलाके से बही है, लेकिन वो ज्ञान की नदी मानी जाती है, लेकिन नर्मदा तपस्या की नदी है। इसके किनारे ऋषियों ने तप किया है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता जो है वो यह है कि इसने चट्टानों को चीर कर अपना रास्ता बनाया, मुसीबत में से आगे बढ़ी है, संघर्ष किया है, रव किया, इसलिए इसका एक नाम रेवा है। रव जो करेगा वो रेवा होगी और जो आनंद देगी वो आनंददायी नर्म यानी आनंद दायने देने वाली। तो नर्मदा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह रेवा भी है और नर्मदा भी है।

0: जहां एक ओर नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर और महेश्वर जैसे तीर्थ नगर बसे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जबलपुर और भड़ौच जैसे औद्योगिक तीर्थ भी। नर्मदा का अंचल उन्नत खेती, मछली उद्योग और स्वादिष्ट फलों के लिए भी जाना जाता है। हमने नर्मदा के किनारे खेती करने वाले कृषक, मछली पकड़ने वाले मछुआरे और फलदार वृक्षों की खेती करने वाले कृषकों से बातचीत की। कृषक श्री प्रेम शंकर चौधरी।
1: मैं तो ये कहूँगा कि होशंगाबाद और आजू बाजू के जितने भी नदी से जुड़े हुए गांव हैं, वो एक बहुत बरदान साबित है और नर्मदा का कछार तो मशहूर है हमारे देश में। तो यहाँ गेहूँ चना की खेती शुरू से ही होती आई है और अच्छी होती है और यहाँ की जमीन भी बहुत उपजाऊ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फल भी बहुत अच्छे हुए हैं।
0: और ये है मछली पकड़ने वाले डल्लू मंसूरिया।
2: अच्छा जी, बताइए आप जो काम करते हैं मछली निकालने का
3: जी,
2: तो इससे आपके परिवार की गुजर बसर हो जाती है?
3: जी हाँ, हो जाती है।
2: अच्छा,
3: जब से हम ये यानी होश संभाला, हमने जब से हम धंधा करते चले आ रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं अच्छी अपनी हो जाती है बसर। घर में 10-12 है ना, तो हम आराम से दो आदमी है जो शिकार करते हैं मछली का धंधा, तो उनमें पूरे 10-12 आदमी को पूरा हो जाता।
2: नर्मदा नदी के कछार में जो मछलियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी?
3: नर्मदा जी के कछारों में मछली मिलती है, बारस मछली मिलती है, पाढ़न मिलती, रेहू मिलती है और एक डीगर मछली मिलती है और यानी बहुत सी मछली है नर्मदा जी की, जितनी मछली सब मिलती है।

नदी का वर्णन हो और नाविक की बात ना हो तो ये कुछ अधूरा ही लगता है। लोगों को पार लगाने वाले नर्मदा के

0: नाविक आज खुद मझधार में है।
1: आपका नाम बताइए।
2: खुशीलाल।
1: खुशीलाल जी, आप कितने सालों से नाव चला रहे हैं?
2: नाव का धंधा साहब मैंने 30 साल चला और अब छोड़ दिया। अब पेट पालन नहीं हुआ, बड़े बड़े आदमी लेने लगे ठेका, हम लोगों को टांग नहीं पूरती।
1: हाँ, तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
2: बेघर रोजगारी बैठे, बाड़ियों का धंधा करते हैं तो खरबूज तरबूज की बाड़ियाँ बह जाती है, हम लोगों की पानी छोड़ देते बंगाल वाले।
1: आपका नाम बताइए।
3: दयाचंद।
1: आप नाव का ही धंधा कर रहे हैं अभी?
3: और नाव का धंधा सब गया साहब, छोड़ा लिया। बड़े बड़े लंबे ठेकेदार लाखों से लेने लगे और हम छोटी परिवार के आदमी हम ठेका क्या ले सकते हैं। हमने जैसे तैसे लोगों से कर्ज लिया, तो वो कर्ज क्या लिया, तो अब वो कर्ज लिया तो लोग बाग बंधान छोड़ने लगे साहब। अब बंधान छोड़ने लगे तो उन्होंने हमें लालच दे दी सरकार ने कि हम आपको मुआवजा देंगे, तो हमने चलो आत्मा को शांति रखी। अब वो मुआवजा के विषय में कहने लगे, वो मुआवजा भी अपना कैंसिल कर दिया।
0: नर्मदा का कछार ही नहीं, यहाँ तक कि इसका पत्थर भी सैकड़ों लोगों के लिए जीवन यापन करने में सहायक है। नर्मदा का संगमरमर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट शिल्पकार संघ के अध्यक्ष के शब्दों में,
4: नर्मदा के प्रति भाव क्या सब जीवन अर्पण है और जीवन उसी से चल रहा है, क्योंकि नर्मदा ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ के सारे क्षेत्र को पाल रही है। क्योंकि जैसे खेती वालों को नहर पानी देती है, इस तरह शिल्पियों को नर्मदा शिल्पियों को पत्थर दे रही है।

0: भारत सभ्यता में नर्मदा की अपरिमित शक्ति के प्रति इतना विश्वास है कि वो इसकी सहायता से एक नए भारत का निर्माण करने का सपना देख रही है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बंधने वाले सैकड़ों छोटे मझोले और बड़े बांध पूरा हो जाने के बाद आसपास की बाढ़ और अकाल की चपेट में आने वाले अंचलों को खुशहाली और हरियाली से भर देंगे। किंतु नर्मदा पर बांधे जाने वाले इन भीमकाय विराट बांधों को लेकर लोगों के मन में आशंका, भय और उत्तेजना भी कुछ कम नहीं है। ये आशंका भारत के उन पर्यावरणवादियों और स्वयंसेवी संगठनों की है जिन्होंने बड़े बांधों के विरोध में जन आंदोलन छेड़ रखा है। इसी सिलसिले में हमने बाबा आमटे से बातचीत की।
1: जो हमारा आंदोलन नर्मदा के खिलाफ चल रहा है वो खाली ये बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये तो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं। हम कैसे बर्ताव करें, हम रहे कैसे, करप्शन कैसा हो रहा उसके खिलाफ है, वैसे इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो रिश्वत लाच ये जो कर उनके खिलाफ ही स्ट्रगल अगेंस्ट नर्मदा बिग डैम्स हैज बिकम अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल दीस थिंग्स। इसीलिए यहाँ घाटी के लोग कहते हैं कि हम जल समाधि ले लेंगे, यहाँ ड्राउन एंड डाइ स्कोर्स खोलेंगे, लेकिन अपनी जमीन को छोड़ेंगे नहीं।
2: अब इन बातों के बारे में आपके दिमाग में क्या विकल्प है?
1: छोटे छोटे बांध बनाते उसकी व्याख्या बनती, मीडियम साइज बांध क्या होती उसकी व्याख्या बनती, जहां नर्मदा के ऊपर बांध नहीं बांध सकते वहां हमारे यहाँ कोयला जाता था, वहां थर्मल स्टेशन बनते। और सब जगह जैसे खरगोन जिले ने एक पैटर्न दिया है, लाखों पंप लगते हैं, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स लगती और अनाज कम नहीं पकता, बिजली भी महंगी नहीं होती।

एक ओर गुजरात की जनता का पीढ़ियों से चला आया बाढ़ और सूखा, दूसरी ओर बड़ी भारी आबादी का अपनी परंपरागत जमीन से विस्थापन और पर्यावरण विनाश आसन्न संकट।

0: हमारी नर्मदा भी असमंजस में पड़ गई है, किंतु नर्मदा पुत्रों का हौसला फिर भी कम नहीं हुआ है। नए भविष्य की आशा में वे मध्य प्रदेश के अपने भावती गांव से बड़ौदा के निकट गुटाल गांव में आकर नए सिरे से बसने लगे हैं। शताब्दियों से मानव सभ्यता का ये क्रम यहाँ नए संकल्प के साथ अब भी जारी है।
1: मेरा नाम है बिहारी लाल, खरगोन जिला, तहसील बड़वानी, ग्राम भौती।
2: ग्राम भौती, हाँ। तो यहाँ आकर कितने दिन हुए आपको?
1: यहाँ करीब हो गए हमको, मतलब 4 महीने।
2: वहाँ पर ग्राम भौती में आपके पास कितनी जमीन थी?
1: मेरे पास वहाँ पर कुछ जमीन नहीं थी।
2: अब आपके साथ यहाँ पर कौन कौन आया है परिवार में?
1: मेरे 2 लड़के और 1 मैं, 3 है मतलब।
2: आपके रहने की क्या व्यवस्था है
1: यहाँ पर? रहने के लिए मतलब अभी टीन सेट बना के दिए हैं, मतलब तो टीन सेट में रह रहे हैं अभी।
2: अच्छा, खेती के लिए जमीन वगैरह?
1: हाँ, खेती के लिए जमीन 5 एकड़ जमीन मतलब प्रति एक आदमी को दी गई है। मतलब तो मेरे घर में जैसे 3 सदस्य हैं, तो मेरे को 15 एकड़ जमीन, मेरे 2 बच्चों और 1 मैं, ऐसे मिला के 15 एकड़ जमीन मिली है। उसके अलावा और हमें मतलब 5,000 रुपये बैल जोड़ी के लिए अनुदान दिया है, और 375 रुपये आपने को मतलब निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।
2: काका, आपका नाम बताइए।
3: मेरा नाम शुभ नाम केवल सिंह वास्कल है।
2: कितनी एकड़ जमीन आपके वहाँ पर थी?
3: 5 एकड़ 80 डिसमल।
2: अच्छा, तो वो जो खेती संभाल रहे हैं वो डूब में नहीं आ रही क्या?
3: डूब में तो आएगी, पर अभी नहीं आए नहीं।
2: अच्छा, कितने एकड़ यहाँ जमीन आपको मिली?
3: 15 एकड़।
4: मेरा नाम नादेशम सोलंकी, 5 भाई और 1 पिताजी, कुल मिला के 6 जना है।
2: वहाँ पर आपके पास कितनी जमीन थी?
4: सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी।
2: वो किसके नाम पर थी?
4: पिताजी के नाम पर।
2: अब यहाँ पर आपको कितनी जमीन मिली हुई है?
4: यहाँ पर 30 एकड़ मिली।

0: गुजरात में बनाए जा रहे सरदार सरोवर ने जहां पर्यावरणवादियों और डूबने आने वाले लोगों के मन में एक भय पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गुजरात राज्य के लोगों को सरदार सरोवर में उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई देने लगी हैं। गुजरात राज्य के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सीसी पटेल,
1: गुजरात पिछले कई सालों से बाढ़ और अकाल से त्रस्त प्रदेश रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो आदमी और पशुओं के पीने के पानी की है। कहीं कहीं पानी का स्तर 30 मीटर नीचे चला गया तो कहीं कहीं 200-300 मीटर नीचे जा चुका है। सन 1985-86 में तो 16 लाख पशु चारा और पानी की तलाश में 400 किलोमीटर तक भटकते रहे। जहां ऐसी दशा हो वहां की जनता अगर नर्मदा के पानी को अमृत की तरह पाना चाहे तो क्या आश्चर्य है। सरदार सरोवर पूरे गुजरात के लिए नए जीवन और नए युग की शुरुआत है। जबकि बांध बनने से ज्यादा 1 लाख आबादी विस्थापित होगी, जिसे हम बेहतर और सुरक्षित स्थिति में योजनाबद्ध ढंग से बसा रहे। इस बांध के बन जाने से गुजरात की जनता के जीवन में नई रोशनी आ जाएगी। पीने का पानी, सिंचाई, विद्युत ऊर्जा का जो लाभ मिलेगा वह तो मिलेगा ही। यहाँ के लोग भयानक बाढ़ और अकाल की चपेट में से भी बच जाएंगे। अकालग्रस्त इलाके हरे भरे हो जाएंगे। सरदार सरोवर भले ही गुजरात की धरती पर बन रहा हो पर इसका लाभ राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी मिलने वाला है।
0: आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं?
1: सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा विस्थापितों का है। इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पुनर्वास योजना दुनिया में अद्वितीय है। जिसके पास जमीन नहीं है उसे भी 5 एकड़ और जिसके पास जमीन है उसे भी हम कम से कम 5 एकड़ दे रहे हैं। अगर किसी संयुक्त परिवार में 5 वयस्क जवान बेटे हैं तो प्रत्येक को 5 एकड़ और खेती लायक जमीन देंगे।
0: ये बात सही है कि जब जब भी विकास की बात हुई कुछ विरोधाभास उभरे हैं, कहीं प्राकृतिक रूप में तो कहीं मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर। जहां एक ओर गुजरात पूरे संकल्प के साथ सरदार सरोवर

0: बनाने में कृत संकल्प है, वहीं मध्य प्रदेश भी इंदिरा सागर बनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा किए हुए हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री शीतला सहाय।
1: मध्य प्रदेश जुलाई 1990 तक दो मत में था, बने या ना बने। यद्यपि ना बने ऐसी कोई गुंजाइश अब है नहीं, समूचा प्रचंड देखा, अध्ययन किया तो हम इस निर्णय पर पहुंचे कि नर्मदा सागर, जिसे इंदिरा सागर भी कहते हैं, बनाने की सिवाय और कोई हमारे पास चारा नहीं। इस बार बजट प्रोविजन भी हमने 180 करोड़ का किया है, 20 करोड़ और उसको मिल जाएंगे, इस तरह से 200 करोड़ के करीब खर्च होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 1000 करोड़ रुपए रखे हैं, कब तक लगभग ये पूरा हो जाएगा? अब नवी पंचवर्षीय योजना तक तो जाएगा।
2: नर्मदा सरोवर के बारे में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
1: जब जब भी विकास के काम हुए हैं उस समय कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विरोध आया है। भाखड़ा नांगल बना हो या इंदिरा नहर बनी हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोध था। और इसलिए इन पर्यावरणवादियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने स्टैंड पर एक बार फिर से विचार करें।
0: पिछले 30-40 वर्षों से भारत की विकास नीति का ही एक हिस्सा है नर्मदा घाटी विकास, जिसके अनुसार पूरे अंचल में नहरों का जाल सा बिछ जाएगा, बिजली पानी की सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी, हमारे किसान ना तो बाढ़ की चपेट में आएंगे, ना सूखा और अकाल की मार खा खा कर आजीविका की तलाश में दर दर भटकेंगे। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां अपने छोटे बड़े बांधों के गहने पहनकर लहलहाते सिवानों में बदल जाएंगी और शत शत कंठों से फूट पड़ेगा ये गीत।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: बैठो बच्चों, बैठो बैठो, आज सुनाता हूँ मैं, बैठो आज सुनाता हूँ मैं रामचंद्र की गाथा। माता पिता के हुक्म के आगे राम ने टेका माथा। चले गए वन में ना ये मन में कोई शंका, अच्छे अच्छे काम किए सब और जीत ली लंका, और जीत ली लंका।
1: अच्छा बाबा, ऐसा हुआ था?

0: ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आप ही शीतल होए। मालिक एक,
1: साईं बाबा सच्चे,
0: मालिक एक,
1: कहते हैं सारे बच्चे,
0: छोटे बच्चे सच्चे, छोटे बच्चे अच्छे, सारे बच्चे सच्चे, सारे बच्चे सच्चे, सारे बच्चे अच्छे। मालिक एक।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

शिव महिमा, महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम

शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दैत्य माता दिति की बहन दनु का पौत्र था शंखचूड, वो भी अति पराक्रमी और बलशाली था। परंतु उसकी विशेषता ये थी कि उसने देवताओं को उनके आसनों से हटा दिया था। उसकी बाकी की प्रजा उससे बहुत प्रसन्न तथा सुखी थी। शंखचूड़ की धर्मपरायणता के कारण ब्रह्मा जी और श्री विष्णु भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे थे। परंतु देवाधिदेव भगवान शंकर के लिए सुर, असुर और मानव समान थे।

0: देवताओं की आपदा देखते हुए भगवान शिव शंकर ने शंखचूड से युद्ध करना स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: परम ज्ञानी शौनक जी, देवाधिदेव को युद्ध स्थल में आया देख धर्मज्ञ शंखचूड तुरंत अपने रथ से उतरा, महादेव को साष्टांग प्रणाम किया।
2: वाह महाभाग सूत जी, शंखचूड का ये कृत्य तो अवश्य ही प्रशंसनीय है। युद्ध स्थल में भी उसने धर्माचरण नहीं त्यागा, विरोधी होने के उपरांत भी उसने शिव जी की आराधना की।
1: शौनक जी, धर्मज्ञ व्यक्ति सर्वेश्वर के महत्व से भली भांति परिचित है। उनके हाथों मिली मृत्यु स्वर्ग प्राप्ति से कम नहीं होती, प्राणी को तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
2: फिर क्या हुआ सूत जी?
1: दोनों ओर के असंख्य वीर योद्धा अपने अपने पक्ष की जय जयकार करते हुए युद्ध के क्षेत्र में उतर पड़े।
3: कृष्ण हरे, देवाधिदेव तथा शंखचूड़ के मध्य युद्ध चलते वर्षों व्यतीत हो गए हैं। प्रतिदिन प्रातः युद्ध आरंभ होकर सूर्यदेव की अंतिम किरण पर समाप्त हो जाता है, परंतु किसी भी पक्ष की विजय के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं।
4: हाँ विधात, दोनों पक्षों के वीर बड़ी संख्या में आहत होकर गिर पड़ते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने मंत्रों से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं।
3: अरे देखिए तो श्री विष्णु, महादेव ने अपना विनाशकारी त्रिशूल उठा लिया है।
4: हाँ? अब तो शंखचूड़ का अंत निश्चित है।
5: ठहरिए प्रभु शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए, इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। आप क्षण भर में समग्र ब्रह्मांड का विनाश करने में सक्षम हैं। आपके समक्ष तो मात्र एक असुर है, परंतु आप सर्वेश्वर द्वारा देव मर्यादा का हनन उचित न होगा।
3: क्या देव मर्यादा का हनन?
5: शंखचूड़ को स्वयं परम पिता का वचन है, जब तक उसके शरीर पर श्री विष्णु का दिया परम उग्र कवच रहेगा और उस कवच की रक्षा उसमें समाया तुलसी का शील करता रहेगा, मृत्यु और जरा शंखचूड़ पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाए। ब्रह्मा के इस वचन को सार्थक कीजिए।
6: तथास्तु, आज के लिए युद्ध समाप्त किया जाए। ब्रह्मदेव, विष्णु जी, ये वरदान और कवच आप ही ने शंखचूड़ को प्रदान किए हैं, अब आप ही मिलकर इस समस्या का समाधान कीजिए।
7: जैसी आज्ञा प्रभु।
6: आओ वृषभराज नंदी, चलें।
4: विधात, प्रतीत होता है महादेव हमसे अप्रसन्न हो गए हैं। तभी वे स्वयं कोई उपाय सुझाए बिना ही अंतर्धान हो गए हैं।
8: हमारे प्रति उनका यह व्यवहार उचित ही है कमल नयन। हम पहले अपने वरदानों से दैत्यों का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और फिर उनसे त्रस्त हो भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं।
4: परंतु ब्रह्मन, हम दोनों भी तो महाप्रभु की भांति भक्त की भक्ति के अधीन रहते हैं।
8: और भक्त भी शंखचूड़ जैसा, जिसने हमारी भक्ति के साथ साथ अपनी प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया। इससे पूर्व के महादैत्य मारे इसलिए गए कि उन्होंने अपनी प्रजा को अत्यधिक त्रस्त किया।
4: ब्रह्मदेव, हम मात्र देवताओं के ही पक्षधर बनकर कैसे रह सकते हैं? विधात, हम सृष्टि संचालक हैं,

0: असुर, मानव, सभी प्राणी हमारी प्रजा हैं। जब हमारी प्रजा सुखी है तो हम उसके राजा को दंड दें तो किस आधार पर?
1: परंतु देवता महेश्वर की प्रजा का एक अंग हैं। वे अपनी प्रजा के एक अंश पर दूसरे अंश द्वारा अत्याचार का दंड दे सकते हैं।
0: परंतु आकाशवाणी ने महाप्रभु से देव मर्यादा का उल्लंघन ना करने की विनती की है।
1: अर्थात हमारे और आपके वरदानों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए कहा है।
2: नारायण नारायण नारायण, आप दोनों प्रभु फिर किन गूढ़ विचारों में लीन हो गए?
0: मुने नारद, आप अंतर्यामी होकर ऐसा क्यों कहते हैं?
2: नारायण नारायण, भगवान विष्णु, आप तो मायाविदों में भी श्रेष्ठ मायावी हैं। आपके लिए क्या असंभव है?
0: शंख चूर्ण से उसका सुरक्षा कवच वापस ले लेना असंभव नहीं है नारद मुने, परंतु तुलसी जैसी पवित्र नारी का शीलहरण अवश्य असंभव है।
2: नारायण नारायण, पर प्रभु जलंधर पत्नी वृंदा के समय पर तो
0: हम प्रभु हैं, तो क्या हमारे हृदय नहीं है नारद? उस दुर्घटना को हम आजीवन नहीं भूल पाएंगे।
2: परंतु देव, आप स्वयं वहां उपस्थित नहीं थे। वो तो देवी वृंदा की उस समय की मानसिकता थी।
0: परंतु उस मानसिकता को जगाने का कारण तो हम ही थे। एक सती को हमारे कारण देह त्याग करना पड़ा।
2: नारायण नारायण, प्रभु आपके कारण नहीं।
0: फिर
2: ये तो उसकी नियति थी। परम पिता सृष्टि करता है, आप सृष्टि संचालक हैं, परंतु नियति सदा संहारक निर्धारित करता है। ये तो शिव लीला ही होती है। इससे ना तो हम अछूते रह सकते हैं और ना ही आप और ना ही सृष्टि का कोई भी अन्य प्राणी। वे हर गतिविधि को मार्ग पर लाने के लिए क्या करते हैं ये तो शिव ही जाने। ये तो शिव की ही महिमा है।
1: पुत्र नारद, तुम क्या इंगित करने का प्रयास कर रहे हो?
2: परम पिता, मैं तो आपका ध्यान महादेव की आज्ञा की ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। जाते समय वे आपको आदेश देकर गए हैं, आप दोनों मिलकर ही इस समस्या का समाधान कीजिए।
1: तुम्हारा कथन सर्वथा उपयुक्त है नारायण देव।
0: कहिए विधात।
1: शिवाज्ञा का पालन तो करना ही होगा।
0: हाँ ब्रह्मदेव, ये तो हमारा परम धर्म है।

0: शीत लहर से तो मुझ ब्राह्मण का शर। क्या करूं, कौन मेरी सहायता करेगा?
1: अरे ये कौन जीर्ण शीर्ण सा व्यक्ति है जो स्वामी शंखचूड़ के मंडप की ओर बढ़ा आ रहा है?
2: ठहरो, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम, क्या चाहते हो?
0: मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भटक कर इस ओर चला आया हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। यदि कुछ भोजन और इस शीत से बचने के लिए वस्त्र उपलब्ध हो जाए तो।
1: अरे मूर्ख, इस रण क्षेत्र में तू किन वस्तुओं की अपेक्षा कर रहा है? जा, भाग जा यहाँ से। स्वामी शंखचूड़ के विश्राम में बाधा ना डाल।
0: शंखचूड़? असुरराज शंखचूड़? मैं भी तो उन्हीं की प्रजा हूँ। उन्होंने कभी अपनी प्रजा को निराश नहीं किया है। स्वामी,
1: अरे
0: स्वामी,
1: क्या कर रहे हो?
0: दानवेंद्र शंखचूड़,
1: अरे
0: मेरी रक्षा कीजिए।
1: चुप हो जाओ।
0: अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए स्वामी।
1: मैं कहता हूँ चुप हो जाओ।
2: भागता है या नहीं?

0: प्रहरी।
1: एक असहाय दीन व्यक्ति से इस प्रकार का व्यवहार करना शंखचूड़ के प्रहरी तक के लिए उचित नहीं।
0: स्वामी,
1: बोलिए ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: मैं धन्य हुआ स्वामी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ असुरराज शंखचूड़। थोड़ा भोजन तथा तन ढकने के लिए कुछ वस्त्र मिल जाए बस।
1: भोजन का प्रबंध तो हो ही जाएगा
2: प्रहरी। आदेश दैत्यराज,
1: हमने अभी भोजन नहीं किया है, उसे तुरंत हमारे इस अतिथि को दे दिया जाए।
2: जो आज्ञा।
1: परंतु विप्रवर, इस शीत से आपकी रक्षा करने के लिए
0: आप अपना ये कवच दे दें स्वामी। हाँ, मात्र एक रात्रि की ही तो बात है, प्रातः मैं आपको लौटा दूंगा।
1: ये कवच? परंतु ब्रह्मा जी तथा तुलसी ने कहा था कि मैं ये कवच कभी ना उतारूं। इसमें उसके शील का वास है, मैं जब तक ये कवच धारण करे रहूंगा सुरक्षित रहूंगा।
0: हे दानवीर शंखचूड़, मात्र एक रात्रि की ही तो बात है।
1: ये ब्राह्मण बेचारा शीत से मरा जा रहा है। ठीक ही तो है, एक रात्रि की ही तो बात है, रात्रि में युद्ध तो होता नहीं, और प्रातः ही मुझे ये कवच लौटा देगा। लीजिए द्विजश्रेष्ठ, ये रहा मेरा कवच। आप भोजन करें तथा रात्रि में इस कवच को ओढ़कर शीत से अपनी रक्षा करें।
0: हाँ स्वामी।
1: तथा मुझे आशीर्वाद दें कि इस युद्ध में मेरी विजय हो।
0: हाँ स्वामी, मेरा आशीर्वाद है, असुरराज इस युद्ध में सत्य की ही विजय होगी।
1: और इस बार सत्य मुझ दानवीर के साथ है।
3: मुने नारद
4: जी, भगवान,
3: शंखचूड़ से अपना अभेद्य कवच लौटा ले पाने में तो हम सफल रहे हैं। इस प्रकार तुलसी के शील का अपहरण भी हमने कर लिया है।
4: नारायण नारायण, अब तो महाप्रभु के मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई है। भोर हो रही है, आइए हम महादेव को सूचित करें।
3: परंतु एक समस्या है नारद।
4: वो क्या विष्णु देवा?
3: अपना कवच लौटा हुआ ना जानकर क्या शंखचूड़ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेगा?
4: नारायण नारायण। हाँ भगवान, ये तो वास्तव में विचारणीय है।
3: तो ऐसी स्थिति में क्या करना उचित होगा?
4: भगवान, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आता है।
3: कहिए मुने नारद।
4: आप अपनी माया से ऐसा ही एक अन्य कवच उत्पन्न करें। उस कवच को मैं किसी भी प्रकार शंखचूड़ तक पहुंचवा दूंगा, और फिर इसके पश्चात देवादि देव को सूचित कर दूंगा। आप ये मूल कवच लेकर तुलसी के पास जाएं।
3: क्या कवच लेकर देवी तुलसी के पास जाऊं? परंतु क्यों मुनिवर?
4: नारायण नारायण, इससे दो कार्य सिद्ध होंगे प्रभुवर।
3: कहो नारद।
4: पहला तो ये कि ये कवच तेजोमय है, युद्ध क्षेत्र के समीप इसका प्रभाव बना रह सकता है, अतः इसका युद्ध स्थल से दूरस्थ रहना ही देवताओं के लिए लाभकारी होगा।
3: और दूसरा कार्य कौन सा सिद्ध होगा नारद?
4: नारायण नारायण, पति की मृत्यु पर सांत्वना देने को पहुंचे स्वयं भगवान विष्णु को समक्ष देख देवी तुलसी का दुख कम हो जाएगा, और इस कवच में बसा देवी तुलसी का शील भी उन्हें

0: असुरराज शंखचूड़, हम सर्वेश्वर हैं, हम छल से किसी को पराजित नहीं करते। अतः तुम्हें एक तथ्य से अवगत करना चाहते हैं।
1: देवाधिदेव, आपने मुझे संबोधित किया, मैं तो मात्र इसी से धन्य हो गया हूँ। आदेश करें।
0: शंखचूड़, नियतिवश भगवान विष्णु द्वारा दिया गया तुम्हारा सुरक्षा कवच देवताओं ने बदल दिया है। इस समय तुम मूल कवच से वंचित हो, अतः मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
1: देवताओं का एक और छल?
0: छल नहीं, तुम्हारी नियति ने असुरराज, ऐसा तो होना ही था।
1: परमेश्वर, यदि यही मेरी नियति है तो मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूँ।
0: मांगो, वर मांगो।
1: दया निधान, आपको तो ज्ञात है देवी राधा के श्राप से ग्रसित होकर ही मुझे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था।
0: हम जानते हैं असुरराज, तुम पूर्व काल में कृष्ण भक्त सुदामा थे।
1: देवाधिदेव, आप मुझे मृत्यु प्रदान करके इस राक्षस योनि से मुक्त करें तथा मेरे स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में गोलोक भेज दें।
0: तथास्तु। हम तुम्हें ये भी वर देते हैं शंखचूड़, कि हमारे शूल से खंडित हुई तुम्हारी हड्डियों से शंख जाति का जन्म होगा। शंख का जल हमारे अतिरिक्त सभी देवी देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाएगा।
1: मेरे धन्य भाग्य, धन्य भाग्य।
0: और जैसे हमारे पुत्र गणेश अग्रपूज्य हैं, वैसे ही शंख ध्वनि हर पावन कार्य का आरंभ करेगी। वो इतनी तीव्र होगी कि दूरस्थ प्राणियों को भी पूजा आरती आरंभ की सूचना देगी। शंखनाद पूजा आराधना के आरंभ का द्योतक होगा। इस ध्वनि से प्राणी पूजा स्थल की ओर अनायास खींचे चले आएंगे।
1: मेरा जन्म सफल हुआ, अब मुझे इस शरीर से मुक्ति दें।
0: तथास्तु। मुक्ति दें।

0: हूँ, क्यों किया देवताओं ने मेरे साथ ये छल?
1: पुत्री तुलसी, इस छल में भी तुम्हारे कल्याण का स्वार्थ निहित था।
0: परम पिता, मुझे अपने शब्द जाल में उलझाने का प्रयास ना करें। मेरा शील भंग किया जाना मेरा ये कल्याण कैसे हुआ?
1: पुत्री, तुम्हारे द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग सर्वथा अनुचित है।
2: देवी तुलसी, आपका किसी ने शील भंग नहीं किया है, अपितु आपने अपने शील को कवच में स्थित कर एक असुर को सौंपा था। हमने तो आपके उसी शील को लौटाया है।
3: और तुलसी, तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तुम एक विष्णु भक्त को राक्षस योनि से मुक्त कराने का निमित्त बनी हो।
0: महादेव, आप
3: तुलसी, तुमने सुदामा को श्राप मुक्त करवाया है। वो पुनः अपने स्वामी की सेवा में तत्पर हो गया है। तुम्हारी तपस्या भी सफल हो गई।
0: वो कैसे देवाधिदेव?
3: तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि मृत्यु के पश्चात शंखचूड़ पुनः गोलोक जाएगा तथा बैकुंठ में तुम श्रीहरि का सामीप्य प्राप्त करोगी।
0: तो अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव?
3: पुत्री, अब तुम ये नश्वर शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लो तथा लक्ष्मी स्वरूपा हो जाओ।
1: पुत्री तुलसी, तुमने जो ये देह त्यागी है ये गंडकी नदी में परिवर्तित हो गई है।
2: और तुलसी, परम पिता के आशीर्वाद से देव पूजन सामग्री में तुम्हारा प्रधान स्थान हो गया है। तुम्हारे पहले शरीर को वृक्ष का रूप मिल गया है।
3: हमारे आशीर्वाद से तुलसी का वृक्ष सबसे पवित्र माना जाएगा।
1: और पुत्री तुलसी, इस वृक्ष के पत्तों में औषधि के गुण भी होंगे। इनका सेवन अनेक प्रकार के शारीरिक विकारों को मिटाने वाला होगा। ये पत्ते जीवन के लिए आवश्यक वायु को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखेंगे।
2: देवी, तुम हर परिवार के घर आंगन में पूजी जाओगी तथा वो घर आंगन तुम्हारे आशीर्वाद से समृद्धि एवं संपन्नता से परिपूर्ण होगा।
0: मैं धन्य हुई प्रभु शिव शंकर, मैं धन्य हुई।
4: परम ज्ञानी शौनक जी, तुलसी को पावन कर देवाधिदेव कैलाश पर्वत को लौट गए। शिवलीला भी कितनी अनोखी है महाभाग सूत जी। अपने विरोधी शंखचूड़ तक को उन्होंने मृत्यु के पश्चात पवित्र शंख में परिवर्तित कर दिया और तुलसी को भी पावन दैवी देह प्रदान कर दी।
5: शौनक जी, यही तो है शिव महिमा।
4: सूत जी, शिव महिमा के अन्य रोचक प्रसंग भी तो सुनाइए।
5: हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा शौनक जी, परंतु कुछ देर के बाद।
6: श्रोताओ, वास्तव में शिव महिमा का इतना अधिक महात्म्य है कि कोई भी प्राणी उससे अछूता नहीं बचा है। आम धारणा यह है कि महाकवि तुलसीदास श्री राम के भक्त थे तथा मीराबाई श्री कृष्ण के विचारों में मगन रहती थीं, उन्हीं के भजन लिखती तथा गाती थीं। परंतु भगवान शिव शंकर की भक्ति वर्ग, जाति तथा वर्ण विशेष की धरोहर नहीं है। तुलसीदास तथा मीरा ने भी शिव आराधना की है। प्रस्तुत है मीराबाई की एक शिव स्तुति।

शिव महिमा का आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के 36वें अध्याय से लेकर 41वें अध्याय तक से लिया था।

खाए कैसी शुभ घड़ी आई। चल शिव जी बिहान देखो पार्वती माई, थोड़ी बबूती रमाई थोड़ी भंग चढ़ाई। चल शिव जी बिहान देखो पार्वती माई, ये है

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

इत्यादि। अर्थात ते महाशक्ति नारायणी ए विलक्षण ए महाशक्ति नु स्वरूप ब्रह्मा वगैरे देवो पण जाणी शकता नथी, तेथी ते अग्नेया कहवायश। ज्यानो अंत छेड़ो ज मळतो नथी, तेथी ते अंताश। ज्यानो लक्ष्य जोई शकातो।

तोहं संसारार्णव तारिणीम। ते दुर्गा देवी नु हूँ वंदन करू छु के जे बधा मंत्रों मा मातृका मूल अक्षर रूपे रहेला छे, शब्दों मा अर्थ रूपे, ज्ञानों मा ए चिन्मयातीत के चिन्मयानंद रूप छे, शून्यों मा शून्य साक्षिणी छे, जनाथी बीजु कोई श्रेष्ठ नथी ते देवी दुर्गा नामे विख्यात छे, जेमने ओळखवा मुश्किल छे। इति दुर्गनेश जे दुष्ट आचार दुराचार ना विनाशिका छे अने संसार ना सागर माथी तारनारा छे, ए दुर्गा देवी ने अमे प्रणाम करी छे। वळी ते दुर्गा देवी के जे

शीलपुत्रीं यशस्विनीं। अर्थात वृष बळर उपर विराजेला त्रिशूल ने धारण करणारा जमना मुगटमा अर्धचंद्र से एवा यशस्विनी शैलपुत्री हिमालय तनयाने मारा मनोरथनी सिद्धिने माटे वंदन करू छू। जो कि आ महादेवी सर्व जगतना अधीश्वरी छे, तो पण हिमालयनी तपश्चर्या अने प्रार्थनाथी प्रसन्न थई एने त्या पुत्री रूपे प्रगट थया, तेथी ते शैलपुत्री कहवाया छे। नवरात्रना आ प्रथम दिवसे नवदुर्गामा शैलपुत्री ने वंदन करीने अपने कृतार्थ थी। ओम शांति ही। तो पछी आ महान महान एवा सुपर्वना समय राष्ट्रना मंगल माटे, विश्वना मंगल माटे अने सौना कल्याण ने माटे चालो अपने सर्व देवीमयी दुर्गानी वंदना करी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।